उम्मीद मौजूदों के बादशाह से है। तुम्हारी उम्मीद मौजूदों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो? तुम्हारे पास तो अल्लाह है। संजब दड़ तमाम खूबसूरत मासूमी सोने समातों के मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम के संबंध है जातों की बारिश और खजानों के साथ दुआएं पल से पल तक आज से कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात दिल से जागता जमी से आसमान तक जिंदगी से मौत सांस से तार दुकान से खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे। सो आमीन या रब्बुल आलमीन। आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। मौजूद यहाँ पर हमारे साथ सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं वाइट एज एंड डे स्किन ब्यूटी शो।

White Age and Skin Beauty Show. बिल्कुल जी, प्रोग्राम व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो में आप लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जा रहा है। ये प्रोग्राम आप लोगों तक नशर किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो अगर आप भी व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, या फिर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाना चाहते हैं, या फिर आप लगा रहे हैं, तो आप लोगों को इस प्रोग्राम में मजीद जो है ना वो बातें ऐसी मालूम पड़ती है जो कि ना सिर्फ आपकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए होंगी बल्कि आपकी खूबसूरती को हमेशा के लिए जो है ना वो लॉक करने के लिए भी होंगी। खूबसूरती भी वो वाली जो हमेशा आपके चेहरे पर मौजूद रहेगी और हमेशा आपके साथ साथ रहेगी। तो आप तमाम तो लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहते हैं। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बत और समातों चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। सो लिसनर्स प्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे ये सदराव के साथ साथ मौजूद है जनाब इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। तो जितने भी प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद है तमाम तो लोगों को जनाब ये बताएंगे कि भाई जान आप हमारे प्रोग्राम का ऐसा भी बन सकते हैं, आप हमारे प्रोग्राम की रौनकों को बढ़ा भी सकते हैं और आप हमारे प्रोग्राम की रौनकें ही है। तो आप हमें ज्वाइन भी करने वाले हैं, क्या तरीके कार होंगे सब कुछ बताएंगे, लेकिन आप जरा अपने हाल चाल बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स, अंत के हालत कैसे ही आपकी हालत उम्मीद शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबकुल मूड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपकी जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है। फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मार ही ली है। आपको पता ना जब हम एंट्रियां मारते हैं बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरे 3 बजे तक, यानी कि 2 घंटे हमारे पास मौजूद होंगे और इन 2 घंटों में हम आप लोगों के साथ इन्नी शाली बातें करने वाले हैं। तो चलिए जी, रेडी शेडी हो जाए, यहाँ पर बहुत से लोग हमारे साथ

से मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रहे थे। ऐसी बहुत सारी आंटियां, अम्मियां, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान सुबह अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वाले गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुने लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्त आइए क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला बिकॉज आली रे आली सिद्धर आली बॉस आपके होंठों पर 440 उल्के समान लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्के समान लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगा से प्रोग्राम कर लेते हैं। आगा से प्रोग्राम करेंगे जी एक बहुत प्यारे से कसीदे के साथ। तो बहुत प्यारा कसीदा हमारे लिस्ट में मौजूद है, उसके बाद हम जैसे ही वो खातिब आप लोगों से होंगे तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या कुछ होने वाला है। बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड जी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट एंड जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट। इस्तेमाल करती रहिए और खूबसूरतियाँ हासिल करती रहिए।

अक्सर सवाल ऐसे कि आज आप मुझे ये बताएंगे, बिल्कुल जी बताएं कि आलू के अलावा कौन सी सब्जी है जिसमें बीज नहीं होते। अक्सर जो है ना कुछ ऐसे सवाल भी आप लोगों से पूछने चाहिए, बहुत सारे अजीब अजीब सवाल मैंने आप लोगों से पूछ लिए हैं। तो आज आप मुझे ये बताइए कि आलू के अलावा कौन सी सब्जी है जिसमें बीज नहीं होते। ओके जी, अगर आप इस सवाल का जवाब जानते हैं और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK, सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो GLR का ना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब, और आप जैसे ही सर्च करते तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाएगा। उसके ऊपर आप जैसे ही आएंगे तो आपको हमारे प्रोग्राम वाइट स्टेशन डी स्किन ब्यूटी शो के लाइव पोस्ट मिल जाते हैं, जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए, और मुझे बताइए आप भी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ साथ टॉपिक को फॉलो करते जाइए जो मैंने आज आप लोगों से पूछ लिया है कि आप मुझे बता रहे हैं कि आलू के अलावा कौन सी सब्जी है जिसमें बीज नहीं होते। ओके जी, चलिए बताइए जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए। और मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि जब आप वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो तो इसके इस्तेमाल से जो है ना आप लोगों की खूबसूरती किस तरह से बढ़ने वाली है। तो खूबसूरती बढ़ाना आजकल के दौर में जो है ना वो हर एक किसी का अच्छा वाला सपना बन चुका है। हर कोई चाहता है कि भाई हमारी खूबसूरती जो ना वो बढ़ती जाए और आपके चेहरे पर कोई निशान ना हो, कोई दाग ना हो, कोई एक्नी ना हो, कोई रिंकल ना हो, आंखों के हल्के जो है ना वो बढ़े हुए ना हो। तो इन सारी चीजों का हल जो है ना बस एक ही है कि जब आप वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को इनका इस्तेमाल करना स्टार्ट करें। ओके जी, अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो आप ये भी अच्छे से जानते होंगे कि ये प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए कितने सारे मजे मजे के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आप लोग अच्छे से जानते हैं कि वाइट एज ब्यूटी क्रीम है, वाइट एज ब्यूटी क्रीम है जो कि नाइट क्रीम है, वाइट एज लवली क्रीम है जो कि फेयरनेस क्रीम है, वाइट एज का ना डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब है, वाइट एज का सोप है, वाइट एज का फेस वॉश है, वाइट एज का लोशन है और वाइट एज के हेयर रिमूवल लोशन है, जो कि इतने सारे प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। बस आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाते हैं, नाम लेकर तलब करते हैं। और इसके अलावा डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात हो तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम है और डी स्किन फेस वॉश है। ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप इस्तेमाल करेंगे और अपनी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ाते रहेंगे। तो बिल्कुल जी, खूबसूरतियां हासिल करते रहेंगे और खूबसूरती के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं बनता। तो मत किया करें और साथ डायल करते रहिए 03-15-799-0595 बुढ़ी 315-79-5095। ये नंबर तुम डायल कर करीबी जनरल स्टोर से तवाजे गोठन में तवाजे एरिया में वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल थी वजन, ठीक हो गया। और मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा कि आप मुझे बताएं कि आलू के अलावा कौन सी सब्जी है जिसके अंदर बीज नहीं होता। अदील खान हमारे साथ मौजूद थे, बेना मुझे तरफ खा मंजन जो सलाम कबूल हो जाए, अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे, आमीन, थैंक यू। और हमारे साथ अदील कहते हैं मोरो से आप हमारा शो सुन रहे हैं, बेना शायरी आए दिए हैं जख्म तो मरहम का तकल्लुफ ना कर, कुछ तो रहने दे मेरी जात पे एहसान अपना, वाह वाह वेरी नाइस। और मोहम्मद जमान हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम टू शो, ओके कहते हैं माय स्वीट बुआ जी, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। आदिल कहती है अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, सिद्रा मैं ठीक, आप बताएं। और कहते हैं वो परिंदा जिसे परवाज से फुर्सत ही ना थी, अब जो तन्हा है तो दीवार पर आ बैठा है, क्या बात है जी, बहुत जबरदस्त। और फहीम शेख हमारे साथ मौजूद हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। और उसके अलावा दर्दी दिल आ चुकी है, वालेकुम अस्सलाम स्वीटी, प्यारी प्यारी को वेलकम कहते सोई सोती हुए इंतजार कर रही थी तुम्हारा चलें क्या बात है। और चाचा खालिद हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम चाचा शाला तांजो। और फहीम कहते हैं आज गाना सुनाइएगा, चले मैं कोशिश करती हूँ सबके गाने लगाएंगे। और चेतन राम हमारे साथ ही, उमर कोट खां आप हमारे साथ ही जी, खुशामदीद कहते हैं आपको बहुत शुक्रिया के साथ साथ। और उसके अलावा चाचा खाल बाबा की पोस्ट रखी है तो आप, नहीं मैंने तो साथ साथ क्या कहते हैं, नहीं नहीं मैंने तो आ जाना ही था, कल मेरी छुट्टी है तो मैं कल नहीं आऊंगी ना आज तो मैंने आना था। और मोलाई मुजाहिद बहुत सारा हमारे साथ मौजूद है, ठूप चूसल से वालेकुम अस्सलाम, क्या कहते हैं स्वीट आरजे सिद्रा जी, आप कैसी हैं। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल जी जी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी उम्मीद बिल्कुल ठीक ठाक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अनवर भाई कहते हैं कि तोल देते हैं लोग चंद बातों पर किरदार, पारी अपनी हो तो उनके उनको तराजू नहीं मिलता, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात हमारे साथ शेयर कर दी। और उनखा अलावा तव्हां सब असांजी पोस्ट के लाइक एंड शेयर कंदा हलो, टॉपिक के फॉलो कंदा हलो, आई मुखे बुधायो तो तव्हां केड़ा प्रोडक्ट इस्तेमाल कयो पया, वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगायो पया या डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगायो पया। उनखा अलावा असां सां गॾु तव्हां मौजूद रहंदा, 881 ते जॉइन कंदा रहो ऐं फेसबुक ते जॉइन कंदा रहो। टाइम थियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठूं था, उनखां पोइ जल्दी वापसी तव्हांजी

0: रोटी नासी तमा करी ने मन जुते बैठा हो जो मां ओही वनी ओही मोटा सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती रहिए और खूबसूरतियां हासिल करती रहिए
1: GAFM 88

ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे। लगाने के तरीके कार बिल्कुल यही है कि आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे, सोने से पहले अपना फेस वॉश कीजिए, उसके बाद आपने जो है ना डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब लगा लेना है जना। अगर आप ये चीजें जो है ना फॉलो करते हैं, ये विलेज मोहम्मद उस्मान ब्रोही सकरण से कि अली अकबर ब्रोही भाई वालेकुम अस्सलाम, प्रोग्राम गुड, मुस्कान सॉन्ग सुनाए, जी जी गाना सुनाते हैं आपको, बोले कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। ओके जी, आप सब लोगों ने ना पोस्ट को लाइक और शेयर भी करना होता है, लाइक और शेयर भी कर दिया करें ताकि जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद होते हैं, ऐसे लोग जिनके हाँ जो है ना उनको नहीं पता कि वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर जितनी भी ये प्रोडक्ट्स मैं आपको प्रोग्राम में बताती रहती हूँ वो मार्केट में कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं, उनको लगाने चाहिए और कौन सा प्रोडक्ट वो क्यों लगाएंगे, या फिर अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी स्किन को बेहतर बनाने के लिए तो वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कौन सा प्रोडक्ट आपकी स्किन के मुताबिक है, ये अगर वो नहीं जानते तो उनको भी पता चल जाए। वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट जो कि आप इस्तेमाल करते हैं अपनी खूबसूरती को बढ़ाते हैं, और ना सिर्फ खूबसूरती बढ़ेगी बल्कि हमेशा के लिए लॉक भी हो जाएगी। तो वाइटेश लवली क्रीम हो या फिर वाइटेश ब्यूटी क्रीम हो, ये जनाब बहुत ही अच्छे वाले सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो आप ट्राई करके देखिएगा। मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम सदरा जी, क्या हाल चाल है आपके, माशाल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम फ्रॉम जेकब आबाद से आपके साथ हैं, थैंक यू। अच्छा किशोर भाई आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, कहते हेलो हाय सलाम अदा खुश आयो जी तामदायो की आयो खुश, और निदिल कहती है ब्यूटीफुल शो ब्यूटीफुल यू एंड थोड़ी सी ब्यूटीफुल मैं भी। आप तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हैं, और जब से आपने वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू किया है तब तो भाई बात ही कुछ और हो गई है, तो वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ऐसे ही करती रहे। अच्छा दर्द दिल कहती है ये दुआएं आपके लिए, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको वो सब दे जो आप दुनिया आखिरत में चाहते हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको मुस्कुराने की इतनी वजूहत दें कि आप पिछली तकलीफें भूल जाएं, मेरी दुआ है कि अगली दफा पाक आपको ऐसा मुस्तकबिल दे कि अल्लाह, दुआ है कि हुस्न इखलाक और लिए हर काम में आसान। सारे लोग भाई आमीन बोलिए। अच्छा लोबी भी आ चुकी है, वालेकुम अस्सलाम, कहते सिरो जानी क्या हाल है, मैं भी आके साथ साथ वेलकम कहते स्वीटी को, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं। अच्छा निदली ने टॉपिक का जवाब दिया है, ठीक है जी क्या बात है, और किशोर भाई कहते हैं टॉपिक जा जवाब इलाही आहेन सब डसिया। इतने नाम तो मुझे भी नहीं पता। मामा जमान सही कह रहे थे कि आपको इतने नाम याद है, कहीं आप कुक तो नहीं। क्या बात है, आप सुन रहे हैं वाइटेश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। कौन सा प्रोडक्ट लगा रहे हैं बताएं तो। ओके जी साजिद हुसैन सुमरो हमारे साथ मौजूद है, शो नाइस अदी, थैंक यू सो मच भाई। और लुबी कहती है कि तुमको सुन लूं तो सभी दर्द सुकून लगते हैं, जाने के इस धुन से तुम लफ्जों को अदा करती हो, आए हाय। अच्छा मोहम्मद जमान आप हमारे साथ, कहते शो वीआईपी है आरजे की तरह, और टॉपिक का जवाब दिया है ओके।

अच्छा अदील तव्हां कल्ह कहिड़ो गानो चयो हुयो उहो गानो अॼु ॿुधंदासीं उन गाने जा थोरा मूंखे लफ़्ज़ यादि नथा अचनि मूंखे ॿुधायो त उहो हलायूं था यासीन खन हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम कहते हैं फहीम शेख लिखते हैं कि जो जाहिर हो जाए वो दर्द कैसा और जो दर्द समझ ना सके वो हम दर्द कैसा आए हाय अच्छा मिठल माकोल आपने टॉपिक का जवाब दिया है ठीक है जी बहुत बेहतरीन मुजाहिद कहते हैं सिजो जी सवाल का जवाब है ओके यानी कि आज मुझे लग रहा है कि सारे लोग होशियार हो गए भाई प्रोग्राम में सही है बाबा सुठी गाला

ओके जी, क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गाना यहाँ पर आप एंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं। व्हाइट एश एंड टी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से। तो इस्तेमाल कर रहे हैं व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स और व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए इतने शानदार किस्म के जो है ना वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। अगर आप ये चाहते हैं भाई हमारे करीबी जनरल स्टोर पर भी मिलनी चाहिए ताकि हमें लेने में आसानी हो, तो उसके लिए आपने डायल करना है जनाब 03-15-799-0595 3715-79-595।

कहते हैं कि टॉपिक ओके ओके जी ठीक हो गया। और फिरोज अली बिरोही हमारे साथ हैं। हाय, दर्द दिल कहती है कि सब ने टॉपिक का जवाब दे दिया, अब मैं क्या जवाब दूं। तुम भी कुछ ना कुछ लिखी दो, सो तवां जो भी हुजन जरूरी।

0: चांदू हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम। नूर चांदू को भी खुश आमदीद कहते हैं वेलकम के साथ साथ। साथ नूर चांदू कहते हैं नकर। अरे नजीर को जो मैं सुन रही हूँ बलूचिस्तान से खुश आमदीद कहते हैं। अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी है तो किसी असले या तारीफ की उम्मीद रखे बगैर दूसरों की मदद करें, सच्ची खुशी बांटने से ही मिलती है। ओके जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने हमारे साथ शेयर कर दी है, बहुत शुक्रिया। और साथ साथ अशफाक खुड़ू हमारे साथ मौजूद है। हेलो। और जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है महर इरफान सियाल साहब कहते हैं नाइस योर ग्रेट होस्टिंग मैम, आर जी नाइस प्रोडक्ट्स। बिल्कुल जी बहुत अच्छे वाले प्रोडक्ट्स हैं और एक एक प्रोडक्ट जो है ना वो भाई प्यार से और सलीके से और तरतीब से तैयार किया गया है। वो हर एक इंसान से जो है ना वो रिलेटेड कोई ना कोई प्रोडक्ट आपको जरूर मिल जाएगा। अगर आप दुनिया में देखते ना हर एक इंसान की अपनी अपनी एक ख्वाहिश होती है, विश होती है कि भाई मैंने जो है ना ये वाला प्रोडक्ट लगाना है या फिर ये वाला प्रोडक्ट जो है वो मैं लगाना चाहता हूँ लेकिन सूट नहीं करता मेरी स्किन के ऊपर, तो भाई आप वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो है ना उनका इंतखाब कर सकते हैं। व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को जैसे हर तरह का प्रोडक्ट मिल रहा है तो ये चीज भी है कि भाई आप लोगों के हिसाब से ही तैयार किए हैं ये प्रोडक्ट्स और ऑल स्किन टाइप के लिए। तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का आप जरूर से इस्तेमाल करके देखिए और ना मिलने की सूरत में आपने जो है ना वो नंबर के ऊपर रहा एक मरतबा लाजमी करना है। ओके जी यासीन खंड बिल्कुल आपकी फरमाइश लगा देंगे जी, टेंशन ना लें। क्या बात है जी, समोसे खाए जा रहे हैं, एंजॉय करें। और निधि कहती हेलो हेलो, ये चीज भाई कभी खत्म ही नहीं होने वाली, आप टेंशन ना लें, बस आप सीधा ब्लॉक मार दिया करें। मोहम्मद ताहिर लुंड हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम सेठा जासी, आप हमारे शो सुन रहे हैं, थैंक यू। और उनखां अलावा जेके भी मानू असा के बुधन पया सबनी जो मोहब्बत हुआ बाबा प्रोग्राम में शामिल थींदा वणो आई असानी पोस्ट के लाइक शेयर करना वणो। अहद अबासी भी असस अगर मौजूद आए तवां जो मोहब्बत हुआ प्रोग्राम बुधो पया। वालेकुम अस्सलाम। और यहां पर टाइम हो जाता है जरा हम जो है ना वो न्यूज़ डे की जानिब जाते हैं, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले हैं तो वापसी जल्दी आप लोगों के पास आए।
1: It's 2 p.m. This line check is brought to you by Fagini Energy City.

शहीद आयतुल्ला कंदाई जो आखिरी रस्मों जारी थे बेतरफ बेतरफ ईरान से अमरीकी हमला हमलन में 14 ईरानी शहीद गुलिस्तान सूबे के अकला शहर में रेलवे पुल से सत मिसाइल फायर किया गया मशहद तरफ वेंडर बिन पुलन से हमला अमरीकी सेंट्रल कमांड

0: आणि मिसाईल्स आहे दोन
1: ते हमला अपना हुरमस में सामूरी जहाजन ते थियल हमलन जो रदे अमल आहन बेहर अड़ी कार्रवाई थी तो नतीजा वधीक सख्त हुंदा। अमरीकी सदर ट्रंप चयो आहे त खेस नथो लॻे त ईरान में अमरीका सां विढ़ण जी का ताक़त बची आहे। ईरान सां जनबंदी मुआदो ख़तम थी वियो आहे। ॿिन्ही मुल्कनि में वॾे पैमाने ते जंग शुरू थियण जो इम्कान नाहे।
0: قیمت ادا کرنی پوندی اپنا ہرمونز امریکی دھمکن سان بے پر ایرانی انتظامن تحت کھولو ویندو ایرانی پارلیامنٹ جے اسپیکر باکر کالے باف چیو آہے تا امریکی دھمکن کان نتا ڈجو اپنا ہرمونز ایرانی انتظام میں خود مختاری تحت کھولو ویندو
2: ट्रिपल मर्डर केस में मुलविस की कस्टडी में निकता उजन्स उन असाजी ट्रैक्टर हल पो जमीन से उन फायरिंग कई है फायरिंग कर कजन के कत्ल कर मौकफ तो यो ही जाहिर पैं भी एक किस्म के लाइसेंस दिनों वो है न टे इंसानी जानू गिड़का गया उनकी कुछ भी न थो तो वो समझन था तो ऑल इन ऑल है वो जो वणे कहन के अज तुम कानून कुछ भी नो कर सके सो अज उन वही चैलेंज किया कानून के ऐसू था हाँ छो थे पर उन तमाम वो नुकसान कर वही बीहर तुम ऐसू सुबह का अदा फायरिंग हल पी पुलिस टाइमली रिस्पॉन्ड न कर जैसे कल ये एडो वो नुकसान थोड़ा पुलिस के सब बार बार इन्फॉर्म कहयासी तो हम अड़ी सिचुएशन थी थी अचे
1: हथियारबंदन की फायरिंग में उमिर बाब चांडे जो सोट कतल उमिर बाब के टिणे कतल केस में वरी पुनर जवाब करन के कतल जो इल्जाम गोट गुंगो पीर वाले इलाके में गोलियों लगन सब रियाज चांडे मारज वो उमिर बाब चांडे चवण है तो सोट जमीन से ट्रैक्टर हलाय रहा हो तो जवाबदार हमलो कर खेस कतल किया जवाबदार समझन था टिणे कतल केस में वरी थन कानून खेन कुछ नो कर

0: स्लेब टाइम काटे जे 1999 खां जून 2020 ताईं जे मुलाज़िमनि जो रिकॉर्ड तलब करे वरितो ने पारां भर्ती थियल समूरनि तदरीसी ऐं गैर तदरीसी मुलाज़िमनि जूं तालीमी क़ाबिलियतनि जो रिकॉर्ड तलब कयो वियो। तालीमी खाते समूरनि लाॻापियल इदारनि ऐं ज़िले तालीमी अफ़सरनि खे ख़त लिखी छॾियो। ख़त में हिदायत कई वई त हफ़्ते अंदरि रिकॉर्ड माणियो वञे। रिटायर्ड मुलाज़िमनि जो बि समूरो रिकॉर्ड तलब कयो वियो आहे।
1: घड़ी केरो जे शाखनि में पाणीपुर खिलाफ़ आबादगारनि जो एहतजाज। आबादगारनि जो चवण आहे त बेगाड़ी किनार मां निकिरंदड़ ताज़ा शाख कीदन शाख लोनमाइंडर ऐं सिरवा में पाणी घटि आहे। जेको पाणी आहे आपासी अमलदार पैसनि एवज़ विकिरो करे रहिया आहिनि। नोटिस वठी शाखनि में पाणी फराहम करे नुक़सान खां बचायो वञे।
0: सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां औरत समेत टिनि ॼणनि जा लाश हथ।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर सिंध।
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

मौजूद है यहाँ पर, जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है, जितनी भी समाती हमारे साथ है, तमाम तो लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बतों, समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। ओके जी, सो हम आ चुके हैं प्रोग्राम के दूसरे घंटे में और यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है उन तमाम तो लोगों को वेलकम करेंगे और साथ साथ ये भी बताएंगे कि प्रोग्राम का जब दूसरा घंटा स्टार्ट हो जाता है तो उसमें फिर आप लोगों को हम डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बता देते तो बिल्कुल जी, बारी आ चुकी है कि आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाए। जनाब, सो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोग जानते हैं कि सिर्फ दो ही प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम है और साथ में आपको डी स्किन फेस वॉश मिल रहा है। तो अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम की क्या खास बातें हैं तो ये आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों को सबसे पहले तो ये बताते चलो कि जिन लोगों की स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है और सेंसिटिव स्किन होने की वजह से वो ये सोचते हैं कि भाई हम कौन सा प्रोडक्ट लगाएं, हमारे लिए कौन सा प्रोडक्ट है, उनके लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम है, क्योंकि ये सेंसिटिव स्किन वाले लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर स्किन के हिसाब से तैयार होने वाला प्रोडक्ट। और इसके अलावा एक और मजे की बात भी आप लोगों को बताती चलूं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये जनाब विटामिन ई बीड से तैयार की गई है। इसके अंदर माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन भी मौजूद है। और इसके अलावा जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन बात कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर्फ दो दिनों में आप लोगों को वाजे नतायज देती है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ दो दिनों में वाजे नतायज के लिए आप डी स्किन वाइटिंग ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि जदीद अज़ा से तैयार की गई है, जैसे कि जिसके अंदर जनाब शामिल किए गए हैं अल्फा आर्बुटीन, कोजिक एसिड, ग्लूटाथायोन और उसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं विटामिन ई बीड्स और माइक्रो बीड्स फॉर्मुलेशन। और अगर आप इस्तेमाल करते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो आपकी स्किन जो है आपकी जिल्द को चमकदार बनाने के लिए जनाब, तो अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपकी स्किन हमेशा जो है ना वो मॉइस्चराइज रहे और आपकी स्किन के अंदर जितनी भी नमी है वो भी खत्म हो जाए, आपके चेहरे की स्किन जो है ना वो अच्छी अच्छी हो जाए, प्यारी प्यारी हो जाए, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मर्द हजरात, खवातीन हर कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप लगा रहे हैं तो साथ में आपने डी स्किन फेस वॉश भी ट्राई करना है। तो डी स्किन फेस वॉश भी आपको मिल रहा है जो कि हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है। और डी स्किन फेस वॉश जो कि आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन मॉइस्चराइज हो जाती है, क्लीन हो जाती है और हाइड्रेट हो जाती है। तो इतनी अच्छी और इतनी प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपके पास मौजूद है जो कि फुल डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किए गए, तो आपको चाहिए कि आप इस्तेमाल लाजमी करके देखिएगा ताकि आप लोगों को रिजल्ट मिले, वो भी बहुत अच्छा वाला, शानदार वाला, और आप ग्लो करते रहें और आपकी खूबसूरती लोगों को बोले देखो भाई देखो ये डी स्किन ब्यूटी क्रीम का कमाल है। ओके जी, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर ये प्रोडक्ट अवेलेबल होने चाहिए तो उसके लिए आपने डायल करना है 03-15-799-0595 बुढ़ी 315-79-5595। सो ही नंबर आहे जेको तव्हांजे आसानी चलाया, अगर तव्हां डायल कंदा त तव्हांजे करीबी जनरल स्टोर्स ते, तव्हांजे ॻोठनि में, तव्हांजे शहरनि में, हर जॻह ते ही तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल थी वेंदा। सो अवेलेबल करायो ऐं खूबसूरती खे हेलो हाय चओ, छो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजी खूबसूरती जे मुताबिक आहे। डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻायो ऐं डी स्किन फेस वॉश लॻायो, ठीकु आहे? ऐं इन खां अलावा मूं तव्हां खां सवाल पुछो आहे त मूंखे ॿुधायो आलू खां अलावा कहिड़ी सब्ज़ी आहे जंहिंजे अंदर ॿिज नाहे हूंदो। हाणे हिन जवाब तव्हां मूंखे ॿुधाईंदा वञो था ऐं टॉपिक खे फॉलो कयो था, असांजे प्रोग्राम में शामिल थियो था, 888-1 ते जॉइन कयो ऐं फेसबुक ते जॉइन कयो। उन खां अलावा फेसबुक वारा जेके प्यारा माण्हू हुन पोस्ट खे लाइक शेयर कंदा हलो। ओके जी, तो पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और बताइए आप भी हमारे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा अच्छे अच्छे वाले गाने हमारी लिस्ट में मौजूद हैं। तो हम जरा ऐसा करते हैं कि गानों की जाने भी आ जाते हैं। ये गाना है जी शमन मिराली की आवाज में।

अच्छा नदी कहती है हाँ ये सच है, वैसे मैंने जब से डी स्किन फेस वॉश एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाना स्टार्ट की है तब से आई एम वेरी प्रिटी। हाँ जी बिल्कुल, ये निदली हमारी बहुत खूबसूरत होती जा रही है कुड़ी। और नूर चानो क्या कहते हैं कि कुछ लोग और कुछ चीजें हमारी नहीं होती, हम सिर्फ कुछ अरसा उनके साथ चल रहे होते हैं, फिर एक दिन जिंदगी आकर कहती है अब वापस करो ये तुम्हारा हिस्सा नहीं था। बिल्कुल जी,

जी जी चाचा तमा यू नंबर डायल करे सगो था ही नंबर डायल करना खा फोरन बात आ पाजे करीबी जनरल स्टोर्स ते दी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अवेलेबल कराए सगो था तो लाजमी तवाने नंबर ते राबतो कजो ठीक आ अदिल कहते हैं तोखे विसारण मुझे वस में ना है मां मजबूर आया डेडिकेट अवा के अई सबनी लिसनर्स जे नाले चली जी मां कोशिश कियां थी तमा जी पसंद जा गाना हलायो था आहा तपासी लिखते हैं कि याद सताती है अब भी उसकी अहद जिक्र करना छोड़ दिया जिसका और कहते हैं कि क्यों याद आता है भूला हुआ शख्स टाइम सा विसरी वेंदो तमा के आई जितरो अटैचमेंट होदो ना उतरो इंसान तमा खा थोड़ो आराम आराम सा विसरदो पर वक्त ते विसरी वेंदो टेंशन न वठो

પહેલા ના કરના કયો બાબા દસોલા સાઈ રોડ ઇનો થવો ન કાલા વાતા માં પ્રોગ્રામ બધો પયા વાઈટ એજ ડી સ્કિન બ્યુટી શો સ્પોન્સર્ડ કિયા જા રહા હે વાઈટ એજ બ્યુટી પ્રોડક્ટ્સ એન્ડ ડી સ્કિન બ્યુટી પ્રોડક્ટ્સ કે દાવન તો આપ ઇસ્તેમાલ કરતે રહે હે ઓર ઇસ્તેમાલ કોન સા પ્રોડક્ટ આપ કર રહે મુજે યે ભી બતાઈએ ઓર સાસત ખૂબસૂરતી કહા તક પહોંચી યે ભી બતાઈએ જરા ઓર અલ્તાફ લો જાગ જાની સાચું હમારે સાથ કે દે પ્લીઝ પ્લે આપસે મિલકર હમ कुछ बदल से गए डेडिकेट आपने किया है अजरा खोसो बिस्मिल एंड मी ओके चाचा लगाने की कोशिश करती हैं आपका गाना भी हाँ। और चाचा खालिद जूनी जो हमारे साथ हैं तमाम भी गानों लिखे हुआ बिल्कुल लड़ाई था हाँ। लिखो था टॉपिक अच्छा चले ठीक है और हमारे साथी जी सलाम डियर आरजे सिद्रा जी खुश हो जो आमीन मिस्किन महबूब अली मल्हा अब्दुल कादर मल्हा अब्दुल समद मल्हा अजीम सिटी सकरेंट से आप हमारे साथ मौजूद हैं खुश आमदीद करते हैं और वफा अब्दुल गफार खास के लिए एंड खादिम हुसैन खास के लिए एंड साजिद अली खास के लिए है कहते हैं आप कैसी हैं भाई मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप बताएं आप सब भाइयों को वेलकम करते हैं और नखा अलावा मीरपुर खास अब्दुल्ला महर कहती हैं अस्सलाम वालेकुम बाजी टॉपिक है पटाटो सब्जी के अंदर बीज नहीं होता वो तो मैंने बताया ना आप बताएं आपको क्या लगता है पटाटो के अलावा कौन कौन सी सब्जियां है हाईली हद करें चली ना करें अच्छा

हमारे साथ हैं। अच्छा चले महबूब अली मला भाई तव्हांजो वराए मैसेज अची वियो आहे, सो थैंक यू सो मच। और हेंची विलेज गुलाम कासिम सोलंगी फ्रॉम हिंगोरजा से दिलावर हुसैन हिंगोरजा, नहीं दिलावर हुसैन सोलंगी। बाजी आप कैसे हैं? टॉपिक अच्छा सही सही, वैसे ये सब्जियों तो ना है सब्जी में एड थींदियूं आहिनि, मतिलबु मूंखे एतिरो लॻंदो आहे वधीक ख़बर। कैसे भाजी? शीला गुल का गाना तो सुनाइएगा। डेडिकेट नज़ीर सोलंगी, एडवोकेट अब्दुल सतार सोलंगी, अलीजान सोलंगी, मुदस्सिर सोलंगी, आसिफ एंड अल्लाह वसायो सोलंगी जी नाले। चलें सब भाइयों को वेलकम एंड खुश आमदीद। और हमारे साथ रसूलाबाद से आबिद हुसैन शम्बानी, वालेकुम अस्सलाम। टॉपिक इस ओके आबिद हुसैन शम्बानी भाई, आपको वेलकम एंड खुश आमदीद करते हैं। साथ साथ बताइए जरा, ग्रीस की ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल की या फिर अभी सिर्फ सोच रहे हैं? और मुनव्वर अली मुगल हमारे साथ ही मीरपुर खास से कहते हैं, बहन सलाम है आपको, लाड़काना में इतनी गर्मी में आप शो करती हो, बोलती हो हम लाड़काना जाते हैं तो गर्मी में हमारी बोलती बंद हो जाती है। भाई ऐसा रही रही नहीं, कौन आदि थी भाई, हम आदि हो चुके हैं भाई इस गर्मी के, तो हमें कुछ नहीं होता। और मुनव्वर भाई थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद है, बहुत दिनों के बाद आप हमारे प्रोग्राम का ऐसा बने और आपको दिल से खुशामदीद। और कहते हैं मुनव्वर अली मुगल, बहन मेरी बेटी मासूमा और गाजिया आपका प्रोग्राम शौक से सुनती हैं। बहन आपका प्रोग्राम 5 से 6 वाला जो है ना मेरे को खास स्टेशन पर भी चलाया।

अच्छा चलिए गाने की फरमाइश कर दी, मैं लगाने की कोशिश करती हूँ। और राशिद अवान हमारे साथ ही फ्रॉम मेहरापुर से, कहते सिस्टर सिद्रा जी ऐसे ही मुस्कुराती रही आमीन, प्रोग्राम अच्छा जा रहा है। आजकल तो सवाल कुछ आज मैंने वाकई यही सोचा कि आज बहुत एक सिंपल सा सवाल आप लोगों से मैं पूछूंगी। और देखिए जब मैंने सिंपल सा सवाल पूछा है तो सारे लोगों ने जवाब दिया है, वरना कुछ गिने चुने लोग हैं जो जवाब देते हैं। तो बस ठीक है, मैंने सोचा है कि आगे से आप लोगों से जो है ना वो सिंपल सिंपल से सवाल भी पूछा करूंगी। और राशिद अवान फ्रॉम मेहरापुर से कहते हैं सिद्रा जी राशिद भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू सो मच। और बताएं मेहरापुर में जी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है नहीं?

बात है किशोर भाई, क्या कहते हैं, जवाब भाई जवाब देना जरूरी भी नहीं होता, सारी चीजों का जवाब मत दिया कर। ये चीज मैंने जिंदगी से सीखी है कि भाई सारी चीजों का जवाब एक इंसान को नहीं देना चाहिए। आपने बहुत मरतबा जो ना खामोशी इख्तियार करनी है, लेकिन हाँ अगर कभी ऐसा मौका मिले कि जहां पर आपको लगे कि यहां पर बोलना जरूरी है तब बोला करें वरना खामोश रहें।

अच्छा समाटो गोपांग हमारे साथ मौजूद हैं जी। हाय वालेकुम अस्सलाम, कंबर सिटी से आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपको वेलकम करते हैं। आपने गाना लिखा है, चलिए टाइम बच गया तो आपका गाना लगा लेंगे। और नखा अलावा हैं जी हमारे साथ फहीम के सिद्धा लोग। अच्छा लाड़काना वालों की शिकायतें करते हैं, कैसे शिकायतें करते हैं बताएं जरा मुझे। और नखा अलावा बिल्कुल जी बिल्कुल, सारे लोग और सारे लोगों का एक एक मैसेज एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा मूवीज जी ना मु डिसन छडे दिनियो आए नहीं, ड्रामा भी डिसन छडे देना है, पर अगर एड़ी घणी मूवी जका सफा हिट वेंदी आए पो मड़ी उन जो एक्सप्लेनेशन रिसी वठंदी आए, खबर पजी ना त बाबा मूवी छाने जी स्टोरी चाहे सो खबर आ त या मूवी की आए उन जो कंटेंट चाहे आई थोड़ी अजीब ही लगी। अजकल जको ने डठो वने त मूवीज जकी अचन थियो, मतलब मां जका से नोटिस किया त ई ना त जी पेरिया मूवीज हुंदी बाबा उन जी हैप्पी एंडिंग थी वेंदी बस गाल खत्म थी वेंदी, लेकिन हाणी आ त मूवीज जकी अचन थियो उन जी एंडिंग ही ना बाबा, वरी ता इंतजार के उन जो नेक्स्ट पार्ट इंदो वरी हे थिंदो वरी हो थिंदो, सस्पेंस में छड़े दियो था मानन के, इन करी असा डिसन ही छड़े दियो ना बाबा, टाइम वेस्ट आ बियो कुछ नहीं।

हमारे साथ यहाँ पर आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं. बिल्कुल जी, सारे मैसेजेस जो है ना वो आपके रीड रखेंगे. आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा वाली बातें करेंगे, लेकिन यहाँ पर टाइम हो जाता है, जरा हम जो है ना शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जाने जाते हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं. तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहना है, सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए. मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आ रही हूँ और आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डे स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डे स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स.

0: सॉप। गर्मियों में देर ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सॉप,
0: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
0: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
0: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।